मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाएं। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा सिमरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है

सत्संगी सज्जन गुरु के प्यार वाले जितने भी माई पाई साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र कदमों की हाजिरी भर रहे हो

0: जे दूजे पासों मंगी है, जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराए मोह दूजी नाही था।
1: उतनू जोड़ जाइए प्रभु।

देवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुद। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुद। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आ के कहना। या मैं

0: को अंत
1: सो वह अनंत
0: कट कट
1: व्याप रहा भगवंत
0: तन्मय
1: आकाश प्यार
0: सर्वलोक।

सुनो तो सुनो। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पटवंते, प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दे आला, नानक जन की मंगेर वाला। प्रभु को सिमरे से परयु पुकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन ने चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन आनंद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु मिया, नानक तिन जन सरनी पिया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेर उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर

ज्ञान न करने को दिए, सपना सर्वाकार कर्म लेता पाइए हो हिकमत सुख साहबा ने कमाई की। पैसा पैसा जी लिखते हैं साढ़े वास्ते बापू का सारा खजाना पुत्रा वास्ते नैत पुत्र संभालने से नलैत नहीं संभाल खजाना सारा बापू का बच्चे वास्ते अपने बापू वाहेगुरु तो अकाल पुरख साहबा ने जो दास लिया भाई साहब जी।

स्नान करके चले आए। एक दिन चले तुर जाए एकांत बह के अपने सारे से मूल मंत्र का जाप करे। पर बड़ा महम बड़ी शक्ति है ये दंगारी मंत्र, जितना जप लो यदा बड़ा काम। तुरदिया फिरदिया उठदिया बहदिया हर नाम, वो नाम वाहिगुरु जी का जपांगे। सतगुरु दिया मेहर फिर सानू की मिलेगा, साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक दुखी पर लोक लगाइए। उस उपरंत कीर्तन मात्री और सारे

अमृत धारा पूर्ण सावधारा सर्व मनोर पूरे जय जय कारण भरो जय अंतर लाभे सकल पूरे पूर्ण गुरु।

सुख सागर पूरन परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही। अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना। ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे। निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय।

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदे हां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां आप सरबा

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा दे साई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

धन गुरु नानक पातशाह इस बच्चे ते बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। भाई छोटेरी उम्र विच इस नूं कितनी चंगी लगन है। इस बच्चे ने जदों समाप्ति होनी तो फिर चुप करके चले जाना। ता मर्दाने नूं हजूर ने कहा, भाई जद ए बच्चा जान लगे इस नूं रोक लेना, इहदे कोलों कुछ पुछना चाहुंदे। अज सतसंग दी समाप्ति होई, भोग पिया कीर्तन दा। धन गुरु नानक पातशाह ने इस बच्चे नूं अपने पास बुलाया, आख्या बेटा तेरी उम्र तां छोटी है पर सिमरन वाले पासे तेरी लगन किवें लगी है। तां इस बच्चे ने दस्या, गरीब नवाज, एक मेरा दा जिक्र है, मेरी मां आटा गुन रही सी ते मैनू कहन लगी तू अग बाल लै ते छेती नाल प्रसाद तैयार हो जावेगा। मैं अनजान सां, मैं वड्डियां लकड़ां पहला बालन दा जतन कीता ता नहीं बलियां। ता मां ने आख्या पहला छोटियां लकड़ां बलदियां हां फिर वड्डियां नूं अग लगदी है। जां मैं छोटियां लकड़ां नूं अग लाई ता ओ पहला ही सड़ के सुआह हो गईयां, फिर वड्डियां लकड़ां नूं अग लगी ता मैनूं ज्ञान हो गया कि मैं भी तो सब तो छोटा हां। ते हो सकदा है पहला काल मैनू ही झपट मार दे ते क्यों ना जितने को श्वास परमेश्वर ने दिते हन उन्हां नूं जप जप के महापुरुषां दी संगत करके सेवा करके सफल कर लवां। ए बचन जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सुने ता इस बच्चे नूं अपने गल नाल ला लिया, बच्चे दे कपाट खुल गए। क्योंकि ए प्रतीत उन्हां नूं ही हुंदा है ना जिन्हां ते गुरु दी कृपा होवे। मनमुख तां खाना पीना हसना सौना, मनमुख नूं तां चार गल्लां चेते हन, विसर गया है मरना। सिमरन विच ओही जुड़दे हन जिन्हां नूं मौत याद है। इस लई हजूर बख्शे

बहु परपंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा है भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग ता लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ स्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ स्वास उसके बदले दे दियो। ता जमदूता ने कहा ए स्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। ता कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पात्र

नानक सिद्धि पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई। पही प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी परिया। ए प्राप्त होए हन तेनू अमोलक श्वास, ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे हैं। पले पुरशा पासों कोई चंगी गल सुन पले बन, ते जे आप बोलना चाहता है तो परमेश्वर की भक्ति कर, ओदा कीर्तन कर, ओदा जस कर, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जाएगा। इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए। मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, जिन्हां नूं ए चंगे गुण प्राप्त हन भई, उन्हां दा संसार ते आउणा सफल सफल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह